0: स्वपी मल बल के लिखे तुम सारे के पुणे सो मला पहला
1: अपने देव हाड़ी सदवार जिन मानस ने देव दिखिए।

चने नक दरियाओ फैल जगत कटे बेकार फैल धरती जमी पार फैल चिंत्र सिर पार फैल राजा तख द्वार फैल सूर्य फैल चंद को करोड़ी चंद नंद फैल सिद्ध सुनार फैल जाने आकाश फैल जोत मामल सूर फैल जावे जावे मोल नानक ने पौ निरंकार सचे खला पहला नानक ने पौ निरंकार हो कि राम रवान कितने कन कहानियां कितने वेद विचार।

0: रहने पौन पानी में संतन चल सूरज उतार सभी धरती माल तन मन संग जार नाम सह ज्ञान में मुनि भय गया जम काल मुता पहला वाइन चले तन चंगुर पर रहलान फिर सिर उठो रामा छठे पाए वेखे लोग से कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाव निरंकार सच नाम जाकर किया सर जहान सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ तिन्ही रैंजना मचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नगर करी नगरी कर्म लगाए पार बोलो चखा चक्की चक थल मारो ले बहुत अनंत लाटू मा धाणी आन गा पंखी पौंदियां लैणा साथ सूए चढ़ पाइए जंत नानक पौंदियां चढ़तना अंत
1: नरमा पाए सूए पैके तुझे सब कुए नच नच असे चले सरोट न जाई सदन होए

चेतन होती खाक में मारी गोर करे चेतन होती खाक निमाणी गौर करे अजमला शेख फरीदा तात्म कुंजणिया अजमला शेख फरीदा तात्म कुंजणिया मनो मचंदणिया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी

चले चलना हार बिचारा ले मनो, चले चलना हार बिचारा ले मनो। गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी नो, जिमें पूछे

नाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सुमरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

जीतला बिहार है देखो तू जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव प्यार

हर जस रे मन गायले हर जस रे मन गायले जो संगी है तेरो असर बिचो जात है।

रे जाते रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावे से खुसाए खां सबे उठ जासी।

मुकाम ता पर जानिए जा रहे ने चलो दुनिया कैसे मुकामे दुनिया कैसे।

कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहता ही कर कर पाप, पाप बुरा पापी को प्यारा, कर कर पाप दर्ब किया। तीन भवन की लक्ष्मी जोरी, तीन भवन की लक्ष्मी जोरी, कर कर पाप दर्ब किया।

रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी, पर जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली, राजा उठिया महल दे अंदर राणी नू लभण लग गए, सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना आवी, मन विच वरत गई है। तो प्यारी सास संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउन लगे, मंदे भी आउन लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है, पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना ए तां मैनूं धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया, नींद आ गई, दिन चढ़िया। जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दिती, राणीए उठ। राणी उठी, राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल कीता राणी ते, ए राणी सच दस तू राती किथे गई से। अधी रात तू गैर हाजिर सी, किथे गई सी। राणी सोचन लगी, जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां, हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी? आई साहब जी लिखदे साध संगत मिल गाम दे, कराती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी, महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया आया सी, चाहे मीह होवे चाहे हनेरी, कैसा भी वैदर क्यों ना होवे, राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी तां हो सकदा है राजा सत्संग तू रोक देवे, पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग, मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले, पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। ए प्यार दी निशानी है, ए प्यार है। राणी सोच, राजे ने फिर किया, राणी बोल तू राती किथे गई से? जे झूठ बोलदी आ तो पति परमेश्वर है, स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है। जे सच बोलदी आ तो सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग है, जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती, सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

उनका वचन बसे जी ना ले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं देवे, भाई नशा के जाले खमाल अंगी के तन आश्री शब सर्वन करो तीन ताल देवी।

तकलीफ च वह सन महाराज जी नहीं सन। तो गुरमत दी साइंस है कि अपने आप नू पूर्ण तौर ते फ्री, पूर्ण तौर ते सुखी, पूर्ण तौर ते आनंद, पूर्ण तौर ते जो अनुभव करना है वो ता ही हो सकता है जे साडे अंदर ये इच्छा पैदा होवे कि गुरु दे सिख सी इस करके हां, क्योंकि असि अपने आपे नू लभना है। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया, ओही गृहस्थी गृहस्थी है जिसने अपने आप नू पहचानिया, नहीं ते घरां दीआं घुम्मण घेरियां दे विच वक्त जाया कर रहे हो। ओही उदासी उदासी है जिसने अपने आप नू पहचानिया, नहीं ते डेरे डूरे ते बथेरे लोग बनाए जांदे हन, उस दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सो अपने आप नू पछाणना साडी जिंदगी दा मुख फर्ज है, यही साडी जिंदगी दा मिशन है। अगर असी अपने आपे नू पहचाने तो बिना इस जीवन चो चले जावांगे तो फिर असी फिर अगेन घुम्मण घेरियां दे विच पै रहांगे। ए लाइफ ए फॉर्म ए अपरचुनिटी है जिस दे विच असी अपनी रियलिटी नू जान सकते हैं, सच नू जान सकते हैं। आओ एक तो फैस लगाओ उपर।

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुसी ओ करोगे तो तुसी अपने ट्रू सेल्फ दे नाल अपना रिश्ता गंढ रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गेट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावांगे करते जावांगे उस दे विच होर भी चीजा हम जो अगले कीर्तन च विचारियां जान दियां उतना असी अपने ट्रू सेल्फ दे नजदीक पहुंचते जावांगे. उतने ही शांत होंदे जावांगे उतने ही ट्रैंकुल होंदे जावांगे उतने ही स्टिल एंड साइलेंट होंदे जावांगे उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब ये नहीं कि कल्ले हुंदे हैं. वो हुंदे हैं परमात्मा दे नाल वो हुंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन. उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा महे निराशो उसकी ये अवस्था हो जाती है. गुरु चुप खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

Paz, Señor. Deixa para dar e dar o jardim que está vai a ré. Isso deve para dar e bahot important question jo hain raise kar rahe hain ki oh prana da naam sanu pran jeevan zindagi den wala prana da naam parmatma vahiru milt pyaro pran naam oh pyara prana da naam vahiru milt pyaro pran naam kavan bhagat te किस भक्ति के द्वारा वो प्यारा वाहिगुरु मिलता है, ये सवाल उठाया है। किस भक्ति के द्वारा, यानी किस मेथड के द्वारा, किस टेक्निक के द्वारा, किस विधि के द्वारा, किस युक्ति के द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है, यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

0: कहते हैं मैं परम गति पाले ही हूं। सब तो ऊंची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरुदेव मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस दिहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल एकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान जिज्ञासु सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं के नाल अपनी मित्रता पाई है, कहते हैं ए जड़े कच्चे हैं इन्होंने तो इत्थे ही छड़ जाना है। कहते हैं तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहानां दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इसनू वरत लीए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज होने हाँ, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हाँ, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वह इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुम उसे ही देखना है। बाणी के एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती है, उथे जाके बैठती है। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहिंदे सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आखिया गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सकते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहिंदे जिहड़ी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनों सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

के हर रंग असर नहीं, किल बिख हर रंग असर नहीं, जय जय जग कारण श्रेष्ठ, जय जय जग कारण।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: ए बड़ी पुरातन रीत आप दो मिनट लिए भी श्रवण करो और गुरु अर्जुन देव पातशाह जो अपनी बख्शिश कर रहे हैं पंच ताल दी बराबर दी सवारी दी ये रीत है।

पातशाह तो सवाल कीते, पातशाह तुसीं अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उत्थे रब दी कथा है, इत्थे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं कीती। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया, कृष्ण नू भगवान बना बैठा। कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणा नू तुहाडी महिमा नू वेख के कोई कह बैठे भई तू ते रब इको ही हो, तू ही रब है, ते फिर की होवेगा? हजूर ने वचन कीता

अच्छा कहन वाले कह छट देनी। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा दे बड़ा खंडन कर दिते, उन्होंने दिल विच कोई भेद सी, फर्क सी। अच्छा कहन लगे नहीं मेरा किसी नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल उन्हां तों विछोड़ के जे मैं आखां मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विचां। मैं कहिंदा बई नहीं, ओ भी दस रहे ने मैं भी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसीं भी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहंदे ने

देहरूप अतनूप मोह महामद भई किंकनी सब चरत काल खेल पाए जीव काल कलम हुक्म हाल कहो कौन मेट सके इस बम जान ध्यान धरत ही चारे सच साच सिर ले आद पुरख सदा तू ही सत्य सच सिर निवास।